0: நேயர்கள் பல்துறை நிகழ்ச்சிகளை தாங்கி வரும் வானொலி முத்தமிழ் ஓசையை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலையும் 7:15 முதல் கேட்க தவறாதீர்கள்.
1: Shanta Patel will be back again next Sunday at 7 a.m. with the teachings of Satya Sai Baba for our Gujarati listeners. You're tuned to Planet FM, broadcasting from the Sky Tower. Staying with the teachings of Sai Baba, Ravi Grover joins us at 7:15 with Sai Vachnamrit for our Hindi listeners.
2: Wild beaches,
3: a number of restaurants.
2: I love cycling around the waterfront.
4: Seeing the sea and knowing that it's full of dolphins and whales.
5: I go tramping every weekend.
6: Loving Auckland.
7: There's always something interesting, something new to find.
8: The harbour is absolutely amazing.
9: Something's always happening.
6: Our diversity.
10: The amazing views.
11: And the libraries.
12: Good weather, good people.
13: And it has great coffee.
14: I find it really hard to think of what's missing in Auckland.
6: planetaudio.org.nz.
15: Would you like to know more about your own self, your surroundings, and the universe? Are you interested in becoming the master of your own future? Tune into 104.6 Planet FM every Monday to Friday from 1:35 p.m. and listen to Radio Buddhist Youth Association Chinese broadcast. Also, if you're interested in Buddhism, there are books in both Chinese and English, free. Please write to us at the Buddhist Youth Association, P.O. Box 82146, Highland Park, Harwick. Take charge and don't miss this great opportunity.
16: Auckland Council ka lakshya hai ki 2040 tak landfill mein jane wale kachre ko zero kiya jaye. Iska matlab hai recycling, composting, cheezon ko dobara istemal karna aur purani cheezon ko naye tarike se kaam mein lena. Planet FM par suniye ek aur zero waste tip. क्या हर बेकार चीज को लैंडफिल में भेजना जरूरी है? अपने नजदीकी कम्युनिटी रीसाइक्लिंग सेंटर पर जाइए। यहां आप अपनी अनवांटेड चीजें दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का सेकंड हैंड सामान खरीद भी सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी और काम की चीज मिल जाए। अपना नजदीकी कम्युनिटी रीसाइक्लिंग सेंटर ढूंढने के लिए ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट देखें। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 63,000 टन कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए wastenothing.co.nz पर जाइए।

जब नवरात्रि आने वाली होती है ना, हमारी उमंगें आसमान को छू रही होती हैं। हम सोचने लग जाते हैं इस बार नवरात्रि में हम अपने आप को कैसे सजाएंगे, कैसे संवरेंगे, कैसे अच्छे दिखेंगे, किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, हमारा परिधान कैसे होगा, हमारा नृत्य कैसे होगा, हम जब नाचेंगे, जब डांडिया करेंगे या जब गाएंगे, क्या गाएंगे, कैसे नाचेंगे। एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, एक ओकेजन है। 9 दिन तक खुशियां ही खुशियां होती हैं, लेकिन नवरात्रि का तात्पर्य इससे कहीं ज्यादा है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें, इसकी बात कर रहे हैं ना, 9 रातों की बात कर रहे हैं। ठीक है हम गाएं बजाएं, ठीक है हम परमात्मा को याद करें, ठीक है हम परमात्मा की आराधना करें, नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के द्वारा और अन्य पूजा की विधियों के द्वारा, लेकिन नवरात्रि का जो कारण है, जो आंतरिक कारण है, उसको समझना बहुत जरूरी है। भाई आप जरा विचार कीजिएगा, एक बार भगवान बाबा ने भी कहा था 9 रातें 9 ग्रह भी हो सकते हैं, ग्रहों का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, हम उनको शांत कर रहे हैं। एक प्रकार से हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, विचार कीजिएगा आप, हम अपने आप पर संयम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान बाबा ने कहा कि इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए केवल 2 बातों पर ध्यान दें, चाहे कितने भी ग्रह हों, कितने भी छिद्र हों, 2 ग्रह, जो ग्रह नहीं है लेकिन ग्रह माना जा सकता है, ग्रह का तो दर्ज आपको जकड़ ले, आपको पकड़ ले, आपको कैप्चर कर ले, वो है राग और द्वेष। राग का अर्थ है अटैचमेंट, द्वेष का अर्थ है हेट्रेड, नफरत। राग का अर्थ है मोह, द्वेष का अर्थ है नफरत। ये 2 ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इनसे मुक्ति पाने के लिए हम 9 दिन की आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 ग्रहों कहां से आते हैं? हमारे संस्कारों से। संस्कार कहां से आते हैं? जो हम जन्म जन्मांतों से कर्म करते आ रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल इंप्रेशन ऑफ मेनी पास्ट लाइव्स, जो जन्म जन्मांतर से हम करते आ रहे हैं, उनका निचोड़ है, उनका रस है, उनकी गंध है, उनका एसेंस है, वहां से आते हैं। विचार कीजिएगा, तो इन विचारों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? नवरात्रि,

वो कहते भाई नौ रातों में हालांकि हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं लेकिन इसको मोटी मोटी बातों में बोला जाए तो तीन महादेवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती। ये तीन देवियां अगर हम इनको समझें तो हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। पहला महाकाली, कहते हैं पहले तीन दिन नवरात्रि के महाकाली की पूजा होती है। महाकाली तामसिक गुणों के प्रतीक है। महाकाली शरीर की प्रतीक है। महाकाली कर्मों की प्रतीक है। शरीर से क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। शरीर से हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म ठीक होने चाहिए। एक तरफ हमने बोला कि तामसिकता की देवियां महाकाली, एक तरफ बोला शरीर की, एक तरफ कर्म की, क्या मतलब हुआ? हम ये कह रहे हैं माता काली से कि मेरे शरीर में से तामसिकता को निकाल दें। जब को आपको तामसिक गुण भी चाहिए, जब आप सो रहे हैं, लेटे हुए, वो तमो है। जब आपका शरीर नहीं हिल रहा, नहीं डुल रहा, वो तमो है, वो तमो गुण है। लेकिन हमारे शरीर से कोई तामसिक कर्म ना हो, उसके लिए हम माता काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, माता मेरे कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाले हों। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कर्म भगवान को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माता लक्ष्मी के पास। महालक्ष्मी जो है वह राजसिक गुणों की प्रतीक है, रजोगुण की, हमारे मन की प्रतीक है। विचार कीजिए, लक्ष्मी का नाम तो जानते ही हैं, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी? मन हमारा अगर रजोगुण से भरा होगा तो हम राजसिकता क्यों भागते रहेंगे? रजोगुण का अर्थ हिलना डुलना भी है, मूवमेंट भी है। रजोगुण का अर्थ विल पावर भी है, इच्छा शक्ति भी है। मन विचारों की गुत्थी है, मन में संस्कार है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। मन से भक्ति की जा सकती है। भक्ति क्या है? परमात्मा के लिए प्रेम, लव फॉर गॉड कहा गया, डिवोशन। जहां कि हम पहले कह रहे हैं कि कर्म हम कर रहे हैं शरीर से, लेकिन शरीर से कर्म आप वही करेंगे जब मन से आवाज निकलेगी ना। अगर आपका मन गलत दिशा पे जा रहा होगा तो शरीर अच्छे काम कैसे कर लेगा? अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो चोरी कैसे कर, शरीर से कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है? मन करवा रहा है, मन से आवाज आ रही है, मन शरीर को निर्देशन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, डू दिस एंड दिस, ऐसा करो वैसा करो। तो हम ये कह रहे हैं
माता लक्ष्मी राजसिक गुणों की प्रतीक है, मन की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक।

हम माँ से कह रहे हैं, माँ मेरे मन को पवित्र करो, प्यूरिफाई माई माइंड, अर्थात मेरे मन में से काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर छह आंतरिक शत्रु बाहर निकल जाएं। अगर वो निकल जाते हैं बाहर, वो कंट्रोल में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं, तब हम अपने मन का प्रयोग धर्म के रास्ते पे कर सकते हैं। अगर मन धर्म के रास्ते पे होगा, तन अपने आप धर्म के रास्ते पे जा सकता है। तीसरी देवी है महासरस्वती, जो सात्विक गुणों की देवी है, जो ज्ञान की देवी। यहाँ पे देखा होगा बहुत से लोग माता सरस्वती की पूजा कराते हैं बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई करें, लेकिन माता सरस्वती वो ज्ञान नहीं देती जिसकी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में विषय वह सोच रहे हैं आप। कोई भौतिक विज्ञान रसायनिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है, फिजिक केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, गणित की बात नहीं हो रही, मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है। माता सरस्वती ज्ञान के प्रतीक तो हैं, लेकिन हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आपको चाहिए आत्मिक ज्ञान, लेकिन आत्मिक ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? जब आपके कर्म सही रास्ते पे होंगे, जब आपकी भक्ति सही रास्ते पे होगी, फिर आप ज्ञान क्यों बढ़ सकते हैं। भगवद गीता में 18 अध्यायों के बीच में तीन महायोगों की बात की गई है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप कुछ भी करते हैं कर्म है, आप नहा रहे हैं कर्म है, आप सो रहे हैं कर्म है, आप बात कर रहे हैं वो भी कर्म है। एक होता है इंस्टेंट कर्म, आप नहाए आपका शरीर साफ हो गया, आपने कर्म किया, नहाने की गतिविधि करी और आपका शरीर साफ हो गया, उसका फल मिल गया आपको। एक कर्म होता है आपने एक बीज को बोया जमीन पर और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उस बीज से वृक्ष बन गया, उसमें से फल आ गया, आपको कर्म का फल मिला, आपने बीज बोया उसका फल मिल रहा है, लेकिन समय ज्यादा लग गया। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने हाथों से शरीर से कर्म है, लेकिन सबसे पहले हमें करना है पवित्र कर्म। वो क्या है? आपने अपना कर्म किया, उस कर्म के और उसके फल को दोनों को परमात्मा को अर्पित कर दिया। आप केवल कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए, बस। जो आपका धर्म है, जो आपका स्वधर्म है, हम कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहे। आप पिता हैं, आपका धर्म है अपने बच्चों के जिक्र करना, बच्चों में गुण डालना, बच्चों को भोजन देना, उनका ख्याल रखना। आप पति हैं, पति का ख्याल रखेंगे। आप पुत्र हैं, माता पिता का ख्याल रखेंगे। आपका धर्म एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ क्या है? जो भी आपके अलग अलग रोल्स हैं लाइफ के अंदर, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका धर्म एज ए एम्प्लॉई क्या है? आप व्यापार करते हैं, आपका धर्म क्या है? अपने धर्म को समझना। आप अपने शरीर से कर्म करेंगे, कर्म का फल, उसका क्रिया जो है, कर्म की क्रिया, करने की क्रिया वो दोनों परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, उसे बोला गया पवित्र कर्म, सेक्रेट कर्म। आसान तरीका है। ठीक है जी, भगवद गीता के अगले अध्याय कहते हैं भक्ति योग, भक्ति क्या, लव फॉर गॉड,

सबके लिए हृदय में प्रेम है, परमात्मा के लिए नहीं है। लव फॉर गॉड का मतलब होता है सबके लिए प्रेम, उसी परमात्मा को सबके भीतर देखना।

0: दीजिएगा आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/sainvachanamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है
1: हाम्रो चौतारी यो हो अकल्यान्डको रेडियोमा गुन्जिने नेपालीहरूको एकमात्र ढुकढुकी
2: यसमा समावेश हुनेछन् नेपाली गीत संगीत समसामयिक कुराकानी तथा संक्षिप्त नेपाली समाचार
3: सुन्न नभुल्नु होला प्रत्येक शुक्रबार साँझ 6:50 देखि प्लानेट एफएम 104.6 मा अथवा इन्टरनेटमा प्लानेट अडियो